0: मदहोश हूँ मैं और होश नहीं, अब क्या होगा
1: क्या होगा
0: कुछ तू ही बता दे जोरा जबी, अब क्या होगा
1: क्या होगा
0: पहलू में रहे तुम सा हंसी, अब क्या होगा
1: क्या होगा
0: हो जाऊँ न मैं दीवाना कहीं, अब क्या होगा।

0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, सुनो तो,